0: jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Eli. Oh, mengedik kaki-kaki ai, wey.
1: Wada karo tum jaane se pehle kar milenge sanam.
2: Mujhe kuch kehna hai.
3: Mujhe bhi kuch kehna hai.
2: मुझे कुछ कहना है
3: मुझे भी कुछ कहना है
2: पहले तुम
3: पहले तुम
2: पहले तुम
3: पहले तुम
2: पहले तुम
3: तुम
2: तुम
3: तुम
2: तुम
3: तुम
2: तुम
3: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए
2: कहती हूँ